WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.5 FM Durham, 14.

सुन रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: dumb.
1: O bolo azadi,
2: o bolo azadi,
1: o bolo azadi,
3: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

KCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

सुनत रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीछे।
1: Hi guys, this is Aditya. Hope you like the song Chand Baliyan. Comment below and share your thoughts with me.
0: ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे।
2: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सादिसी हो आशिकी हो मुझे पता है तुम किस गली हो किस मोहल्ले जात की हो मुझे पता है तुम खुश नहीं हो दिखती तो आजाद भी हो पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी मैं एक लड़का हूँ तुम मेरे बाद भी हो

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास. दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंसल ग्रुप.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स. फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा. Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते, पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो। घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला O2 इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते।

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

तेलंगाना। आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD 449 AM एंड 99.9 FM HD 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मौरिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल रूट सेंटर। वेल माय ट्राइंगल में बहुत जल्दी सेदार क्रीक गैलरी नेशनल टीपॉट शो होने वाला है। टीपॉट टेक्स मेनी फॉर्म्स एंड दैट सेदार क्रीक गैलरी नेशनल टीपॉट शो 13 यू विल सी देम ऑल दिस क्यूरेटेड एग्जिबिट which occurs only every 3 years, featuring 240 craft teapots by more than 140 artists from across the North America, exploring the creative challenges of the teapots created in glass, metal, clay, wood, fiber, and mixed media. The collection celebrates the timeless charms and creativity of teapots, from classic functional design to sculptures pieces that stretch the imagination, each one of its celebration of artistry and craft. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुन करिए मानिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये धमाकेदार गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 49 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu, Nairasi. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून सेंटर। वेल, हमारे ट्राइंगल में बहुत जल्दी देवयार म्यूजिक सेंटर समर फेस्टिवल होने वाला है। देवयार म्यूजिक सेंटर मार्क इट्स 90th एनिवर्सरी दिस समर विद अ सीजन दैट रिफ्लेक्ट्स बोथ इट्स हिस्ट्री एंड इट्स पर्पस। Bring great artists and emerging musicians together in Breviad's idyllic mountain setting. This summer festival season honored the legacy with a wide-ranging program that spanned classic orchestra and opera through a Motown, jazz and bluegrass. मजा आने वाला है। बहुत सारे musicians, artists यहाँ साथ में perform करने वाले हैं। इसलिए miss मत करिए, जरूर enjoy करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LD4, 49 AM and 99.9 FM LD3 for Telugu. नायरा से मैं हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूर्स एंड टॉक. Well, my triangle me one more time for the first annual Winter Village Watermelon Festival celebrate होने वाला है. Experience the sweet taste of summer in Winter Village during the favorite Eastern North Carolina tradition. This 41st annual festival brings 4 days of live entertainment, carnival ride, local shopping, food vendor, and watermelon inspired fun to town. Scroll rows of craft and commercial booths cheer on contestants in the crowd favorite watermelon eating contest and enjoy classical festival bites from funnel cake and turkey leg to refreshing watermelon tea. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पता नहीं पता लोकल.

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

ये गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। फिल्म ट्रायंगल में फिर से एक बार WNC बिगफुट फेस्टिवल होने वाला है। किक ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द WNC बिगफुट फेस्टिवल द नाइट बिफोर विद द कम्युनिटी लाइव म्यूजिक एंड बिगफुट थीम मिनी इवेंट। एक्सप्लोर डाउनटाउन मैरियन, विजिट लोकल बिजनेसेस एंड एंजॉय द सोशल डिस्ट्रिक्ट एज द टाउन प्रिपेयर फॉर द सैटरडे मेन इवेंट। ऑन सैटरडे द स्ट्रीट ऑफ डाउनटाउन मैरियन विल बी फुल ऑफ स्केप्टिक बिलीवर्स, रिसर्चर एंड क्यूरियस फोक ऑल आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वेयर इज द बिगफुट। वेल मजा आने वाला है और 5K रन भी होने वाली है, इसलिए मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देखिए, पक्का लोग करिए।

ओ माय गॉड, क्या गाना था भाई साहब, एक नंबर। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर। वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी नॉर्थ कैरोलिना हॉट सॉस फेस्टिवल होने वाला है। Turn up the heat at the North Carolina's Hot Sauce Contest and Festival in historic downtown Oxford. This signature Granville County event brings together bold flavors, local makers and live entertainment for lively fall celebration. The only festival taking pride in making government cry. Four stages will be feature live music, dance, purple martial art demonstration and other performances. Main stage highlights currently include Elijah Harris and Bounce. वेल, बच्चों के लिए किड जोन भी होने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मानिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 James ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 James ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी।

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू एंड टॉक। वो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी जानकारी भी अपने ट्रायंगल के बारे में आपको देने वाली हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रायंगल के वन ऑफ द आर्ट म्यूजियम आचविले आर्ट म्यूजियम के बारे में। ये म्यूजियम एक नॉन प्रॉफिट विजुअल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन अलायंस ऑफ म्यूजियम ने अक्रेडिएट किया है। म्यूजियम प्रेजेंट्स एग्जिबिट एंड पब्लिक प्रोग्राम बेस्ड ऑन इट्स परमानेंट कलेक्शन ऑफ 20th एंड 24th सेंचुरी अमेरिकन आर्ट। द म्यूजियम फीचर रीजनल एंड नेशनल आर्टिस्ट through special exhibition and showcase works of the significance to our triangle. वही थोड़ी देर में इस म्यूजियम की हिस्ट्री के बारे में आपको बताने वाली थी, इसीलिए फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सॉन्ग ऑन ओनली रेडियो नायरा। पका देसी पका लोकल।

गाना था यार आज तो मेरे सारे फेवरेट लिस्ट वाले गाने बज रहे हैं। वेल 101.9 एफएम 99.9 एफएम एलटी 4 1490 एएम एंड 99.9 एफएम एलटी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टॉक। वैसे हमारे ट्रायंगल में देखा जाए तो इतनी सारी हिस्ट्री छुपी है कि ढूंढते ढूंढते थक जाओगे भाई साहब। वेल मैं आपको एशुले आर्ट म्यूजियम के बारे में बता रही थी, तो ये म्यूजियम 1948 में बना हुआ है। उस वक्त सिर्फ 3 रूम की ये बिल्डिंग थी। By 1950, the museum began acquiring a permanent collection. The collection outgrew its home and the museum moved to donate space on 15th floor of Northwestern Bank building. When plans for Ashville Civic Center were announced in 1972, the museum board accepted an invitation to be on the one of three culture agencies center. और फिर 1999 में ये बिल्डिंग बनी जो आज आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ जरूर विजिट कीजिए और अपने हिस्ट्री को और करीब से जानने की कोशिश करिए। फिलहाल कहीं जाइए नहीं, सुनिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ने आपके अपने शो पे विच इज दिल से देसी विद मैन। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, आज है इंडिया की आज़ादी का 80th ईयर। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग द 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हम 2026 में पहुंच गए हैं। 80 ईयर्स, दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू यू नो एक एक लाइफ स्पैन होता है किसी का, तो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अबाउट 80 ईयर्स। सो यू नो एक जनरेशन गुजर चुकी है आज़ादी से, हम इतना कह सकते हैं, राइट। तो ये एपिसोड आज का दो हिस्सों में है, राइट। तो आई एम गोना टॉक अबाउट इंडिया एट 80, राइट। 80 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, वेयर आर वी, व्हाट आर द गुड्स एंड यू नो थिंग्स टू इम्प्रूव। तो यू नो जश्न की तारीख है आज, आज तो उत्सव है, सभी जगह पे यू नो तिरंगा लहरा रहा है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरी दुनिया में हो, राइट। तो आप यू नो वो चीज़ को पे सभी को गर्व है दैट वी आर ऑल इंडियंस एंड यू नो वी आर एंजॉइंग दिस डे। तो आज का शो मैंने थोड़ा दो हिस्सों में यू नो बांटा हुआ है। तो यू नो पहला जो होगा, इट्स ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस, इट्स ऑल अबाउट यू नो उत्सव एंड उत्साह एंड क्या चीज़ें बढ़िया हुई हैं इतने सालों में और कैसे हम प्रोग्रेस हो गए, क्या थे और क्या हो गए हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ गोना बी लाइक यू नो आई कॉल इट लाइक सच का आईना, राइट, लाइक ट्रूथ ऑफ यू नो मिरर ऑफ अ ट्रूथ, राइट, जहाँ पे हम उन्हीं ऑनेस्ट सवाल को फेस कर रहे हैं 80 साल के बाद में भी, राइट। सो समटाइम्स वी ऑल नो, वी ऑल लव आवर कंट्री फ्रॉम हार्ट एंड सोल, बट देर आर स्टिल थिंग्स दैट इंडिया लैक्स बिहाइंड ऑन, राइट। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस एंड यू नो हैव दैट ऑनेस्ट रेट्रोस्पेक्ट, राइट, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, उसको वी थ्रो इट अंडर द रग्स, इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट एक्चुअली बिकम्स वर्स। तो ये जरूरी है कि हम इन चीज़ों पे बात करें, इसको पुश करें, बिकॉज दैट्स ऑल व्हाट इट इज, राइट, अनलेस यू डोंट पोक दीज टॉपिक्स यू नो इसमें सुधार नहीं आता। तो विल टॉक अबाउट लाइक एजुकेशन इन हेल्थ केयर, करप्शन, सिविक सेंस, जॉब्स, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, कहाँ पे हैं हम, राइट, लाइक इन चीज़ों को। तो दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक डिवाइड इनटू टू सेगमेंट्स, पहले हम सब यू नो हंकी डोरी चीज़ें जो बढ़िया हुई हैं, राइट, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट दोज थिंग्स बिकॉज द चेंज हैज़ कम, द यूथ इज देयर नाउ, द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल यंग फोक्स एंड थिंग्स आर हैपनिंग, बट देयर इज ऑल्सो थिंग्स विच इज पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट एंड वी शुड बी लिसनिंग टू इट। एंड आई थिंक आई हैव अ फर्म बिलीवर इन कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को पता है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, राइट, बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट द इशू इज, एवरीबडी नोज इट, बट यू नो क्या कर सकते हैं हम, राइट। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फ़ोन में, मीडिया में, तरक्की हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट ऑल ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज ऑल्सो अ ह्यूज सेगमेंट which is still suffering with basic needs. So, हम दोनों की बात करेंगे आज। तो पहले आज थोड़े गाने वाने हो जाए, मैंने आज सारी प्ले लिस्ट चेंज कर दी है, सॉरी फॉर द फोक्स हु सेट अप ऑल ऑफ दीज प्ले लिस्ट, बट लकीली मैं ये सब सीख गया हूँ अभी, तो मैंने सब गाने वाने चेंज कर दिए। होपफुली आज थोड़े देशभक्ति के गाने बजाते हैं पहले, फिर थोड़े फंक्शन करेंगे। तो आई होप यू आर एन्जॉइंग इट। देर इज ऑल्सो अ बिग सेलिब्रेशन गोइंग ऑन रिजिडेंसी टूडे, वेयर देर इज अ कल्चरल फेयर, अलग अलग टाइप के खाने हैं वहाँ पे, फूड स्टॉल्स है, झंडा वंदन हो रहा है, देर इज अ लॉट ऑफ किड्स आउट देयर, डांस, म्यूजिक, बैंड, बाजा, बहुत कुछ चल रहा है, राइट। तो वी शुड ऑल सेलिब्रेट दिस डे टुडे विद ऑल हैप्पीनेस, विद द ग्रेस, बिकॉज यू नो हमने वो देखी नहीं है क्या स्ट्रगल थी। इफ यू गो बैक एंड लुक एट ऑल दोस ओल्ड वीडियोज जो आज सर्कुलेट हो रही हैं कि हाउ वी वर यू नो एनस्लेव्ड इन टू अदर थिंग्स, और कितनी चीज़ें थी उसके अंदर, राइट, कि कितना वट एवर जनरेशन हैव गॉन थ्रू टू गेट दिस फ्रीडम। इट्स अभी तो बहुत आसान लगता है लोगों को, बट आप 10 मिनट भी विदाउट AC के बैठी है तो पता लगता है कि क्या हालत होती है। तो सोचिए उस जमाने में, उस टाइम पे कैसे यू नो व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, क्या सिचुएशन होगी उनकी और कैसे जी रहे होंगे। तो देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज आउट देयर, यू शुड गो चेक इट आउट, दैट्स वेयर यू रियली गेट गूज बम्प्स टू सी ओ माई गॉड ये सब कुछ भी हो रहा था। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बताइए कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, राइट, इसकी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इन चीज़ों की
क्या वैल्यू है, राइट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग. इट कम्स विद इट्स ओन कॉस्ट, बट इट ऑल्सो हैज लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स अलॉन्ग विद दिस. थोड़े गाने

सुनिए देन आई बी राइट आफ्टर द ब्रेक, फिर हम शुरू करते हैं हमारा शो दिल से देसी बीट मैन। आप सुन रहे रेडियो नायरा, यू कैन ऑल्सो ट्यून इन ऑन 99.9 FM, HD4 101.9 FM और 1490 AM। आप ऑल्सो मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन 919-999-8595। आई रिपीट 919-999-8595। बताइए आज आप क्या कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। तब तक के लिए आई विल बी राइट बैक, थोड़े गाने वाने सुनिए एंड देन विल किक ऑफ द शो।

0: और बिस्मिल दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ने पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे, हाँ, और उन पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
1: तू नहीं हटता, उन्हें दूध देना बंद कर दे।
2: सपने

0: मिलता संदेश, लखनऊ जाने वाली ट्रेन, उसमें छोटू सुन, तेन बिस्मिल का संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सुन, 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लूटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के, उसमें लूटेगा
1: नहीं।
0: यार उसे हम हथियार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे?
1: हथियार।
0: हाँ शाबाश, जा
1: तीन

0: स्पेल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन उसमें फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम 7 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।
1: बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हस हस रंग दे।

0: बसंती
1: मोहे रंग दे बसंती रंग दे बसंती रंग दे बसंती यार।
2: क्या बात है दोस्तों, तो आज तो शो की शुरुआत ही जोरदार हुई है। होपफुली आई पुट आउट ऑल अ गुड प्लेलिस्ट म्यूजिक टुडे। तो आज दोस्तों, हूएवर इज ट्यूनिंग इन नाउ, वी आर ऑन दिल से देसी शो विद वैन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 पर। आप ऑल्सो ट्यून इन कर सकते हैं 101.9 एफएम या 1419 AM पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं टू लेट मी नो हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग, और इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स ऑन द रेडियो हियर ऑन लाइव 919-999-8595। तो आज है बहुत ही स्पेशल दिन, आज़ादी का 80th ईयर, 15th August, जिस दिन के लिए हम हर साल वेट करते हैं अपने देश की आज़ादी मनाने के लिए और उसको रिमेंबर करने के लिए ऑल द सैक्रीफाइसेस द पीपल हैव गिवन इन द पास्ट। तो आज का एपिसोड, जैसे मैंने बताया, बहुत ही एक्साइटिंग होगा क्योंकि हम आज़ादी के पूरे 80 ईयर्स पूरे कर चुके हैं। और हम दो सेगमेंट पे इस शो को चलाएंगे, तो जहाँ पर पूरा देश आज़ादी मना रहा है, राइट? सो सोच के देखिए, राइट, जरा लाइक गो बैक 80 ईयर्स, जस्ट इमेजिन दिस मोमेंट के 15 अगस्त 1949 की रात, राइट, जब पूरा देश सो रहा होगा, राइट? एंड देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन द पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि भाई जो बहुत ही फेमस एक स्पीच है, राइट, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक अप्स टू द लाइफ ऑफ फ्रीडम, राइट? वो एक नया देश अपना देश एक नई सांस लेगा, राइट, नेक्स्ट डे। सो इमेजिन दैट मोमेंट, लोगों के अंदर क्या उत्साह होगा, व्हाट वाज द सिचुएशन बैक देन, कैसे होगा। आज 80 ईयर्स बाद हम उन देश की बात कर रहे हैं जो चलते ही जा रहा है ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो दो घंटे का शो है। मैंने जैसे बताया कि लाइक पहले वी विल टॉक अबाउट ऑल द जश्न, ऑल द उत्सव आज़ादी, ऑल द इम्प्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट, और दूसरा वी विल टॉक अबाउट कि भाई वेयर आर वी लैकिंग बिहाइंड और क्या जरूरी है, लाइक दीज आर द थिंग्स वी नीड टू हाईलाइट एंड टॉक अबाउट। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट आई कॉल इज आज और कल, राइट, कल और आज, राइट, लाइक व्हाट वाज इन द पास्ट। तो चलिए थोड़ा एक क्विक टाइम मशीन की राइड लेते हैं, 1947 में इंडिया कैसा था और 2026 में इंडिया कैसा चल रहा है, साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, राइट, लाइक फॉर एनी कंट्री पॉपुलेशन मींस अ लॉट, राइट, बिकॉज दैट्स द वर्क फोर्स, that is what it drives the economy, everything, right, it's all revolves the core factor of the country. So 34 crore, right, 34 crore population thi 1947 mein aur aaj hai 146 crores, right, next month. Some of these numbers might be up and down, but that's the close by number what it is. The world's most populous nation bhi kehte hain, right, ke India is very high in population. Imagine kijiye 34 crore se 146 crore, right, like that's also one of the strength of India, kehte hain ki bhai population is so high that the workforce is so much available there, right? And then life expectancy ki baat kijiye, right, this is like a shocking number. Us time pe the normal life expectancy was 32 years, can you believe it, like 32 saal was a normal life expectancy kyunki itni sari bimariyan, facilities kuch nahi tha, it was in oppression, right? So imagine 32 years is nothing, right? I mean, I'm turning 40, means like normal, agar aap 40 ji liye matlab to aap set ho gaye pretty much, right? एंड आज क्या है, आज इट्स मोर देन डबल, इट्स 72 years, इंडिया सिटिंग एट 72 years लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लिटरेसी रेट देखिए, राइट, लाइक दीज आर सम शॉकिंग नंबर्स, राइट, लिटरेसी रेट उस टाइम पे सिर्फ 12% थी, 12% रफली, राइट, और आज है 78% लिटरेसी रेट, लाइक विद इन यूथ लिटरेसी रेट बिटवीन एज टू 15 to 24 इज अबाउट 90%। तो लिटरेसी रेट की बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू शुड बी एबल टू रीड द टेक्स्ट बुक्स और or someone who knows everything about the topic, but literacy ki definition kuch alag hoti hai, likhna padhna jante ho, right? So imagine kahan 12% aur kahan 78% pe aa gayi hai, right? Economy, right, the newly partition jo hua tha us time pe, famine tha, khane peene ki problem thi, growth ki issue thi, food crisis tha, you know, aur aaj dekhiye fifth to sixth largest economy hai, right? Roughly about 4.15 trillion ki economy, which is like, you know third largest as a purchasing power ke index ke hisab se dekha jaye to, right? To आप इमेजिन कीजिए कि लाइक इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई है और यू नो कहाँ पे खाने की किल्लत थी और आज यू आर कमिंग टू फोर्थ एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट? पॉवर्टी, राइट? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम वाज इन यू नो अ डायर पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी और आज इज अबाउट डाउन टू 2.3% लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, लाइक 2 से 3% एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं. उस टाइम पे मोर देन हाफ एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे, राइट? ये सब वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ 2022 और 2023 का, राइट? सो वन ऑफ द फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन कंट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री में इंडिया आ गया है कि उन्होंने इतनी तेजी से गरीबी हटाई है. एंड अगेन, लाइक थिंग्स आर डिफरेंट, राइट? अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ अलग भी चीज़ें दिखेंगी, मगर जो स्टैटिस्टिक्स चलते हैं वाइड रेंज पे, वो ये नंबर्स, ये स्टोरी बता रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है, राइट? लाइक ये स्टैटिस्टिक्स दो चीज़ें बताते हैं. इसका यू नो इसका मतलब ये है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, जो इंडिया में पैदा हुए थे, जिस इंडिया में उनके पोता पोती आज जी रहे हैं, या आज अमेरिका में है, या कहीं पर भी बैठे, राइट? वो दो बिल्कुल ही अलग दुनिया है, राइट? दे हैवंट सीन एनी ऑफ दैट. और आज जो उनकी डिमांड्स हैं और उनकी नीड्स है, दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट. दिस एवरीथिंग इज चेंज्ड. ऑफकोर्स यू नो वर्ल्ड तो इवॉल्व हुआ ही 80 ईयर्स में, बट जो लाइफ वो जी रहे थे, जिस तकलीफ से वो गुजरे हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट नाउ. अब आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड ऑल दीज थिंग्स. बैक इन द डेज लाइक इट वॉज नॉट पॉसिबल. तो यहीं से मज़ेदार चीज़ शुरू होती है, क्योंकि अगर हम इंडिया इतना आगे बढ़ गया है तो फिर इतनी चीज़ों में पीछे भी क्यों रह गया है, राइट? वही हम सुनेंगे नेक्स्ट आवर में. यू नो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑल दी गुड स्टफ राइट नाउ, राइट? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट जो जो चीज़ें कहाँ से इंडिया का था और कहाँ पे ऊपर आया. तो पहले चलिए थोड़े यू नो जश्न मनाते हैं, गाने वाने सुनते हैं, देन विल कीप कंटिन्यूइंग द शो एंड विल कीप पुटिंग ऑल द फैक्ट्स, फिगर्स एंड ऑल दीज गुड स्टफ व्हिच इज हैपनिंग आउट राइट नाउ. तो गाने वाने सुनिए, देन विल राइट बैक.

क्या बात है, लगान ऑलवेज अ गुड मूवी टू वॉच, राइट? वेरी इमोशनल एंड वेरी एंटरटेनिंग मूवी. सो आप सुन रहे हैं दिल से देसी शो विद मैन ऑन रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 पर. आप ट्यून इन कर सकते हैं 101.9 एफएम पर या 1419 एएम पर. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 919-999-8595 पर. आज हम बात करें इंडिया हिट 80. सो वी विल लुक एट टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडिया, राइट? 80 ईयर्स में हम कहाँ पे हैं एंड कितनी सारी प्रोग्रेस हो गई है. लाइक लुक एट दिस नंबर, दीज आर लाइक माइंड ब्लोइंग. सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू यू नो आर्थिक क्रांति, राइट? लाइक इकोनॉमिक स्टोरी, राइट? कि भाई एवरीथिंग इज टाइड टू मनी एंड द ग्रोथ एंड एवरीथिंग कम्स अलॉन्ग विद दैट. तो यू नो कैसे इंडिया आगे बढ़ा है, राइट, 80 ईयर्स के अंदर. तो 2026 में इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, राइट? आप सुनते भी होंगे बहुत जगह पे, टॉप 10 इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट रेट से ग्रो हो रही है. जहाँ पे इतनी वॉर चल रही है, इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, फिर भी इंडिया अपने आप को सस्टेन करके रख चुका है. नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है इतनी पॉपुलेशन के साथ में उसको कंटेंट रखना, उसको साथ में रखना, जोड़ के रखना. इट्स गोइंग विद अबाउट 6.5%. दैट इज ह्यूज ग्रोथ एवरी ईयर और वो कंसिस्टेंटली चलती आ रही है. कई साल तो ज़्यादा भी थी, बट फिर भी इवन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग, जहाँ पे ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू यू नो कंट्रीज फाइटिंग विद ईच अदर, इतना कुछ वॉर चल रहा है, और उसके बावजूद भी यू नो इश्यूज यू नो चलते जा रहे हैं, एंड थिंग्स आर यू नो स्टिल प्रोग्रेसिंग, राइट? इतना कुछ बढ़ रहा है. तो मैं कहूँगा कि

विच इज ह्यूज राइट. अगर आप देखिए कि कहाँ से इतनी पॉपुलेशन के साथ में लेके चलना और इतना आगे बढ़ना. एक्सट्रीम पॉवर्टी फेल डाउन अबाउट 16.2% फॉर 16.2% ऑफ पॉपुलेशन, जो 2011-12 में थी वो अबाउट 2.3% पे आ गई है 2022-2023 में. ये वर्ल्ड बैंक जो इसको कहते हैं, विच इज देयर सेइंग इट इज द शार्पेस्ट डिक्लाइन. आपने न्यूज़ मीडिया में भी सुना होगा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब जहाँ पे खाना पीना रहना छत भी नहीं है वो सब प्रॉब्लम, वो कितनी ड्रास्टिकली फॉल हुई है. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर्स इन सॉफ्टवेयर राइट. अबाउट 250 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है इंडिया एक इस टाइम पे राइट. जहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर में और इस इंडस्ट्री में यू नो वी आर प्रीटी डोमिनेंट हियर. जीएसटी कलेक्शन क्रॉस 19.35 लाख करोड़ राइट, विच इज अबाउट 219 बिलियन डॉलर्स इन 2025-2026, अप ओवर 7% ओवर ईयर ओवर ईयर. यू नो सो अगर आप देखिए तो टैक्सेशन भी लोग धीरे धीरे भरना शुरू कर रहे हैं और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो रही हैं. पहले इट वॉज लाइक आया राम गया राम वाला हिसाब था राइट. बट अभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोल हो चुकी हैं. सिस्टम्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, पीपल आर गिविंग देयर फेयर शेयर, प्रोसेसेस बन गए हैं, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इकानमी स्ट्रांग हो रही है राइट. इकानमी स्ट्रांग हो रही है तो भाई लोगों के पास पैसा आ रहा है. तो जगह अगर ये सफर ही नहीं है राइट, इफ़ यू लुक एट दीज द रिपोर्ट्स, इसमें बहुत कुछ चीज़ें छुपी है राइट. ये एक रियल डेटा है विच इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम सम गवर्नमेंट और समथिंग, दीज आर कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. जो मैंने आपको नंबर बता रहा हूँ सो जो एक्चुअल जो बिग इंस्टीट्यूशंस के नंबर्स और रिपोर्टिंग उसमें ये सब चीज़ें आई हैं. तो जो आपकी फैमिली, अगर आप देखिए पहले हम साइकिल में घूमते थे या पैदल घूमते थे या बस और ट्रेन, आज अगर इफ़ यू गो टू इंडिया एवरी हाउस हैज़ स्कूल आई मीन स्कूटर कार वेरी इजीली एक्सेसिबल राइट. जहाँ पे एक जगह पे बिजली और पानी के लिए प्रॉब्लम होती थी, आज सबके हाथ में फ़ोन और 4G चल रहा है वहाँ पे राइट. तो बहुत कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है देखा जाए तो पहले से और अभी की तरफ से. और आगे चल के वी विल टॉक अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी राइट, कितना कहाँ पे हम पहुँच गए. जहाँ पे आप सोचिए पानी की नल की प्रॉब्लम होती थी, जहाँ से लोग कुओं से पानी लेते थे, आज उसी कंट्री में स्पेस में कितना सब एक्सप्लोर कर लिया और कितने आगे बढ़ गए हैं. तो थोड़े गाने वाने सुनिए, विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस, आई विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक.

जय हो। सो आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन, एंड हम बात कर रहे हैं इंडिया 80 की। तो यू कैन कॉल मी एट 919-999-8595। तो हम बात कर रहे हैं कि कितना आगे इंडिया निकल चुका है, राइट? एंड दिस इज समथिंग विच इज आई माइंड बॉगलिंग। सो विज्ञान और अंतरिक्ष, राइट, साइंस एंड स्पेस स्टार्टअप्स, ये कितना अभी, पहले तो ये लाइक ना सोचना भी बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए कि भाई यार यार कहाँ पहुँचेंगे, राइट? बट कुछ साल पहले आपने जब इसरो का चंद्रयान 3 को लैंड करते हुए साउथ पोल पर सफलतापूर्वक देखा, राइट, वहां पहुंचने वाला पहला देश बन गया दुनिया में। तो पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया क्या कर सकता है, और वो भी कितने कम बजट में कर सकता है। मंगलयान, याद है आपको कि पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंचना, और वो भी इतने कम खर्चे में। सम पीपल ऑल्सो मेक लाइक जोक ऑफ इट कि भाई एक हॉलीवुड मूवी जो है लाइक ग्रेविटी की मूवी की बजट से भी कम है, राइट, कि मंगलयान मिशन को मार्स में पहुंचा देना। एंड नाउ देर वर्किंग ऑन लाइक गगनयान, राइट, प्रोग्राम जो चल रहा है। इंडिया अपना खुद का एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, कितनी बड़ी चीज़ है कि भाई इतनी चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, इतने कल्चरल है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, लोग हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, साथ में जी रहे हैं, लाइक सो डिफिकल्ट, और उसके बीच में ये सब कुछ चल रहा है, राइट? जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे अमीरी भी बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास इज़ ग्रोइंग, और उसके साथ में एक स्पेस फ्लाइट मिशन चल रहा है, राइट? सो यू थिंक अबाउट इट। और स्पेस ही नहीं है, राइट, इफ़ यू लुक एट लाइक इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू हो गया है, राइट, जहाँ पे आज पहले ये सुनने को भी नहीं मिलता था कि कोई इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनीज आएगी, और आज के टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज ग्रो अप हो रही हैं। यू गो टू दिस सिटीज लाइक बेंगलुरु एंड हैदराबाद, पुणे, यू नेम इट, राइट, यू गो टू दिस बिग सिटीज, ये पूरा एक शहर अब ग्लोबल टेक हब बन चुका है, इफ़ यू गो देयर, राइट, लाइक यू कैन सी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। IT हब्स है वहाँ पे, MNC कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, नोएडा जाइए, गुड़गांव जाइए, जस्ट लुक एट दीज प्लेसेस हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म, राइट, कि भाई वर्क फोर्स कितनी चेंज हो गई है। 52 से ज़्यादा इंडियन यूनिवर्सिटी अब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फीचर करती है, राइट, तो यू हैव ऑलरेडी हर्ड द नेम ऑफ IIT ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना चुका है, राइट। IIT के ग्रेजुएट्स जो गूगल में इन सब कंपनीज में जब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, दे गेट ह्यूज पैकेजेस, राइट, बिकॉज द इंस्टीट्यूशन हैज़ मोर रिकग्निशन। तो ये वो इंडिया है जहाँ पे हम अपने अपने दम पर, अपने दिमाग से दुनिया को दिखा रहे हैं धीरे धीरे कि वी आर डेवलपिंग नेशन से आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज वी आर इनोवेटिंग, वी आर ऑल्सो कीपिंग अवर फुट इन द डोर इन ऑल ऑफ दीज एवेन्यूज, जिसकी एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर होती है वर्ल्ड की इन चीज़ों में रहना। लेकिन सवाल ये है कि अब हम चांद पे भी पहुँच सकते हैं, हम अपनी सब कुछ, इतना सब कुछ कर रहे हैं पर हमारे शेयर के पॉट होल्स क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं, इतना इतना टाइम और पैसा हम सब ये सब कुछ कर सकते हैं मगर यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते। तो रखिए ये सवाल, कीप दिस क्वेश्चन टू यू, वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, राइट, कि भाई जहाँ पे आप स्पेस में पहुँच रहे हैं वहाँ पे आप पॉट होल्स क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, रोड क्यों नहीं ठीक कर पा रहे। तो ये भी एक चैलेंज है, एक क्वेश्चन है, विच इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेसी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हम इसके बारे में भी डिग थ्रू करेंगे इन फॉलो पावर्स। तब तक के लिए थोड़े गाने सुनिए, then I'll be right back.

0: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन। वी आर ऑन रेडियो नाइट।

is over 3.5 trillion in transaction just in financial year 25 and 26 alone. आप सोचिए एक साल के अंदर इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन उसके थ्रू हो रहा है, राइट? नियरली 24,162 crores, विच इज 241.6 बिलियन इंडिविजुअल UPI ट्रांजैक्शन इन वन ईयर. बिलियंस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एवरेजिंग क्लोज टू 66 करोड़ ट्रांजैक्शन एवरी सिंगल डे हो रहा है UPI के थ्रू. तो सोचिए कितना ज़्यादा वो ब्लैक मार्केट इकोनॉमी निकल रही है, क्योंकि पहले तो सब कैश कैश कैश चलता था, अब कितना सब ये चीज़ें भी हट रही हैं, राइट? इंडिया नाउ हैंडल्स अबाउट 49% ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम डेटा पेमेंट्स, राइट? ऑलमोस्ट वन इन एवरी टू इंस्टेंट पेमेंट्स ग्लोबली हैपन्स ऑन इंडियन रेल्स, राइट? आप अगर आप देखिए कि कितनी सारी पेमेंट्स यू नो इंडियन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू हो रही है. UPI हैज़ एक्सपेंडेड टू फ्रॉम 216 बैंक्स 2021 में, और 5 साल में वो एक्सपेंड होकर 690 बैंक्स तक पहुँच चुका है, राइट? एंड नाउ दे आर ऑल्सो इंटरनेशनली लाइव इन UAE, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, यू नो फ्रांस, मॉरिशियस, ऑल ऑफ दीज अदर कंट्रीज एज वेल. तो सोचिए, राइट? लाइक सभी सब्जी वाले के पास जाओ, या यू नो यू गो टू एनी वेंडर, मॉल में जाइए, कहीं पे भी जाइए, एक छोटा सा QR कोड यू नो स्कैन किया एंड पेमेंट हो गया. एंड यू नो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल जो अब दुनिया भर में यू नो स्टडी भी किया जा रहा है कि लाइक हाउ डिड दिस कंट्री विद मैसिव पॉपुलेशन इज एबल टू हैंडल दिस ट्रांजैक्शन, दिस लोड एंड दिस टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन यू नो वर्किंग परफेक्टली फाइन एंड इज बुलेट प्रूफ यू नो सिक्योर्ड, राइट? तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, ये जेन्युइनली एक चीज़ है जिसके ऊपर पूरा देश को यू नो इट शुड बी प्राउड ऑफ, लाइक यू वर एबल टू डू दैट. लाइक इंडिया में ये सोचना बहुत मुश्किल था 16 साल पहले, बट अभी आप देखिए ये चीज़ चल रही है वहाँ. लाइक आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन QR कोड्स, वो लोग पेमेंट्स इतना फास्ट मूव ऑन कर रहे हैं, थिंग्स हैव गॉन टू डिजिटल थिंग्स. इंडिया ने अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन रास्ता बनाया है जो विलेजेस और गांव तक भी पहुंचा दिया है इन चीज़ों को. एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग, राइट? तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है होना. इट्स नॉट ईजी, राइट? दूसरा मैं एक बात करूंगा कि इफ़ यू लुक एट यू नो दी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रेन्स की एवोल्यूशन देखिए आप इंडिया में, लाइक पहले कैसी ट्रेन्स होती थी और आज क्या है. वंदे भारत चल रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, ऑल दीज लाइक इकोनॉमिकल यू नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर. आई नो लॉन्ग टाइम I was 16 when I left India, but उस टाइम पे प्लेन में जाना मतलब लाइक कोई ऐसा था कि ये बहुत ही रईस बंदा है, यू नो प्लेन से आया है उठ के, राइट? बट नाउ इट्स लाइक नॉर्मल, लाइक पीपल आर टेकिंग फ्लाइट्स विद इन इंटरनल कंट्रीज, दे आर गोइंग आउट, दे आर शॉपिंग, दे आर कमिंग बैक. मुझे कितने लोग पता है जो सवेरे निकलते हैं, दे गो टू दुबई शॉपिंग एंड दे कम बैक होम एट नाइट. तो एयरपोर्ट्स कितने बढ़ गए हैं, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, कि भाई ये मेट्रो ट्रेन्स आ गई हैं, अंडर वाटर, ओवर रेल, साइड बाईपास, क्या क्या बन रहा है वहाँ पे, कितना डेवलपमेंट हो रहा है. इनफैक्ट आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल जस्ट टू डेज अगो के सबसे हाईएस्ट जो लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है आज तक वो इंडिया को दिया है अभी तक, जो जो कंट्री ने लिया है लोन. World Bank has given so much money. I don't know the exact number, but if you even go back in Google search, right, India will be the topmost one to take to receive those loans from World Bank for human development, for development infrastructure. तो ये तभी देते हैं जब इन programs के track record हो, इनकी एक validity हो. इसके पीछे ऐसे ही नहीं कोई भी you know एक institution उठा के किसी country को पैसा दे देता है for you know cheaper loan interest rate. तो definitely बहुत कुछ change हुआ है. I mean I couldn't even summarize this in 1 hour, almost एक घंटे पूरे हो चुके हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं. इफ यू लुक एट लाइक नॉर्मल पीपल्स लाइफ, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, यू नो टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, सबके हाथ में है, मोबाइल डेटा कितना चीप है, सब ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन हैज दिस. मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस ब्लैक मार्केट इकोनॉमी. ऑफकोर्स देयर इज करप्शन देयर, करप्शन इज द बिगेस्ट इशू इन द कंट्री, बट स्टिल थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड. द गवर्नमेंट हैज पुट इन यू नो एनफोर्समेंट इन प्लेस टू यू नो कर्व दीज थिंग्स डाउन. ऑफकोर्स यू नो इट वॉन्ट चेंज ओवर नाइट, बट नेक्स्ट आवर में आफ्टर द ब्रेक, आई मीन आफ्टर द सॉन्ग, वी विल टॉक अबाउट कि भाई क्या चल रहा है, राइट? के यहाँ पे
और मतलब क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी चेंज असली दूसरे साइड ऑफ द रियलिटी क्या है. ये तो सब भाई हमने अच्छी चीज़ें बात की राइट, बट कहाँ पे इंडिया लैक कर रहा है और ये चीज़ों के बारे में भी बात करना जरूरी है. नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीथिंग, बट एटलीस्ट इट्स इंपॉर्टेंट.

टू नो दीज थिंग्स एज वेल, कि भाई हम किसी गलत चीज पे आंख बंद करके सो जाएं, दैट इज नॉट गोना फिक्स एनी थिंग, राइट? सो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दैट एज वेल. तो चलो गाने वाने सुनिए, देन विल बी राइट आफ्टर आफ्टर द ब्रेक.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन, एंड हम बात करें आज इंडिया हिट 80 की। तो अब सेकंड सेगमेंट शुरू हो चुका है जहाँ पे द मिरर ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं, राइट। तो लाइक देखिए, लाइक पहले घंटे हमने बात की लाइक स्पेस, इकोनॉमी, फ्लाइट मिशन, डिजिटल इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ चेंज हुआ, राइट। बट यू नो, लेकिन मैं आपको अगर यू नो सिर्फ यही गुणगान गाता रहूँ, राइट, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल दिस गुड थिंग्स, और अगर हम जो कमियाँ हैं उसकी बात नहीं करेंगे, तो यू आर ऑनेस्टली नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ। क्योंकि जितना देश को हम सब प्यार करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, राइट, अवर ऑल हार्ट एंड सोल बिलोंग्स देयर, राइट, उसकी कमियों के बारे में आप बात ना करो, तो देन यू आर नेवर गोना बी एबल टू यू नो फिक्स द इशू और नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, राइट। क्योंकि बहुत से लोगों को ये डेटा, फिगर्स, फैक्ट्स नहीं पता होते, दे आर जस्ट लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल देयर, राइट। तो बिना जज किए, बिना क्रिटिसाइज किए, राइट, लेट्स लुक एट लाइक एक फ्रॉम द होप परस्पेक्टिव के होपफुली इन कमिंग ईयर्स दीज थिंग्स चेंज, बिकॉज वेन एवर देर इज पीपल पुशिंग फॉर एंड वेन एवर देर इज क्वेश्चन आउट इन चीज़ों के ऊपर, फिर वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं और वो चीज़ें फिक्स होती हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन, राइट। तो पांचवी सबसे बड़ी और 130वीं सबसे पीछे, राइट, व्हाट इज दिस, राइट। सो इफ यू लुक एट, अगर हम ये सुन के थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट इंडिया दुनिया की यू नो जैसे मैंने बताया 56 लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के हिसाब से, लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, राइट, यहाँ लोगों की असल जिंदगी कैसे चल रही है, लाइक विच यू नो कंपेयर्स द हेल्थ, एजुकेशन, इनकम को मिलाकर सब कुछ, तो इंडिया 193 कंट्रीज में 130th नंबर पर है, राइट। नाउ लुक एट द ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या है, लेट्स लुक एट समथिंग मोर इन डिटेल, राइट। तो UNDP की 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में इंडिया 130 आया है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, विच इज विद द हाई स्कोर ऑफ लाइक 0.68, स्टिल अ मीडियम, राइट, लाइक इट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट वर्स, बट फिर भी हम बहुत पीछे हैं, जस्ट शॉर्ट ऑफ अ थ्रेश होल्ड ऑफ कमिंग क्लोज टू हाई, राइट। तो इंडिया हैज क्लाइम्ब द रैंक ऑफ 134 टू 130, जो थोड़ा सा आगे गया है, राइट, बट पर हम फिर भी पीछे हैं, जेन्युइनली लाइक स्टेडी प्रोग्रेस है, सब कुछ है, बट हम फिर भी बहुत पीछे हैं। अगर हम पहले से कंपेयर करें तो हम 53% ग्रो भी हुए हैं, राइट, हम बहुत पहले पीछे थे 1990s में, बट वी हैव टू डू अ मच बेटर जॉब इन दिस। द गैप रिमेन्स स्टार्क, राइट, लाइक 5th इकोनॉमी इन द इकोनॉमिक आउटपुट, बट 130 फॉर वेदर द आउटपुट इज ट्रांसलेटिंग इन टू पीपल्स वेल बींग, राइट, कि आप देखिए कि वो लोगों की रियली में तरक्की हो रही है आम आदमी की वहां पे कि नहीं, वो ये बताता है ये रिपोर्ट डायरेक्टली, द नंबर डायरेक्टली शोज दैट। इंडिया रैंक्स 108 इन द UN जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, राइट। तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्टिल रिमेन्स बिलो 30%, राइट। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा एक पैरामीटर होता है कि जहां पे यू नो इक्वालिटी ना हो, राइट, कि जहां पे मेंस एंड वुमेन्स दोनों अगर खाना में कॉन्ट्रीब्यूट ना कर रहे हो या उनके लिए ओपन इक्वालिटी ना हो, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये गैप क्या बताता है, ये जीडीपी बताती है देश की कितनी प्रोड्यूस कर रही है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि आम आदमी, आम औरत, लाइक यू नो आम बच्चे वहाँ पे, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं, राइट, क्या उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनको अच्छा इलाज मिल रहा है, क्या उनकी इनकम अच्छी हो रही है, क्या उन्हें जॉब्स मिल रही हैं, दीज आर द थिंग्स विच इज टॉकिंग अबाउट, एंड इंडिया इज स्टिल बिहाइंड इन दैट। तो हम जब बोलते हैं कि लाइक यू नो इंडिया तरक्की कर रहा है, तो सवाल ये है कि लाइक किसके लिए कर रहा है, इज़ इट यू नो ये सबके लिए इक्वली तरक्की हो रही है, या कि सिर्फ अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब ही रह रहे हैं, और यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक इज़ इट द इक्वालिटी पार्ट देयर स्टिल और नॉट। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है, राइट, यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ द इंडिकेटर विच डायरेक्टली कंपेयर्स द कंट्रीज ह्यूमन इंडेक्स, राइट, कि भाई वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, कैसे जी रहे हैं, बिकॉज एट द बेसिक नीड्स क्या है, खाना, रहना, इनकम, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन, दीज आर द 5-4-5 कोर थिंग्स, और अगर ये इसी में हम बहुत पीछे हैं तो वी स्टिल हैव टू वर्क अ लॉट इन दीज थिंग्स। तो सुनिए गाने वाने, देन विल बी राइट बैक, आई विल बी प्रेजेंटिंग मोर फैक्ट्स टू यू।

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन। वी आर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स इन द शो और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया एट 80। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4। यू कैन ऑल्सो ट्यून इन ऑन 101.9 FM और 1490 AM। तो हम बात कर रहे हैं द सेकेंड साइड ऑफ यू नो इंडिया की चैलेंजेस क्या है, राइट? आई वोंट से इट लाइक यू नो इंडिया लैक्स, बट यू नो इजिप्ट, ये सब चैलेंजेस हैं इंडिया की जो इंडिया को ओवरकम करना है इफ़ दे वॉन्ट टू ऑल्सो बी एट द ग्लोबल स्टेज। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एजुकेशन, लाइक पढ़ाई का। जब भी आपने देखा भी होगा वो प्रोटेस्ट और सब कुछ चल रहा है, राइट? लाइक कैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की उनके पेपर लीक हो जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स, राइट? दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। बट लाइक यू नो लेट्स लुक एट द यू नो दिस इज द फाउंडेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री की। क्योंकि यहाँ पे देखिए, लाइक यू नो चाहे कोई भी हो, डिपेंड्स, डजेंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, लाइक व्हाट योर स्टेटस, वट एवर इट इज, राइट? बट एजुकेशन इज फ्री टू यू एंड द क्वालिटी एजुकेशन इज फ्री टू यू, राइट? तो ओवरऑल इंडियन ओवरऑल लिटरेसी में इंडियन स्टैंड्स अबाउट 75 to 77%. That is way below the average, global average of 89%, right? तो अभी भी हम थोड़ा सा नीचे हैं, not that bad. We have gone long ways. जैसे मैंने पहले बताया, we were at like 25% and हम अब 77 to 78% पे आए हैं, but there is still way more that we need to do, right? Youth literacy जो age 15 to 24 is a generally bright spot, right? They are going over 90%. तो अभी जो youth आ रही है, they are focusing very heavy on that because they don't see any other options. कि भाई ये नहीं हुआ तो बहुत डिफिकल्ट, और पेरेंट्स भी अभी समझ रहे हैं कि भाई यू नो यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, राइट? तो द न्यूअर जनरेशन इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस प्रोग्रेस, बट अगेन स्टिल द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो मैटर, जिसकी हम अभी बात करते हैं, राइट? तो एक जेंडर यू नो गैप भी है, एक प्रसिस्टेंस जो होती है जेंडर गैप के अंदर एजुकेशन में, वो भी है। लाइक फीमेल लिटरेसी इज स्टिल लो कम्पेयर टू द मेन्स, राइट? उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यू नो, बट स्टिल मेल आर डोमिनेटिंग इन एजुकेशन वर्सेज द फीमेल्स, राइट? कि भाई कई बार एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग भी होती है फैमिलीज के अंदर, ये वो, बट स्टिल लाइक दैट नीड्स टू चेंज बिकॉज यू नो एज, और अगर इसके आप देखिए, पहले जो मैंने बताया डायरेक्टली वर्कफोर्स पे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे जो पहले हमने बताया था कि भाई वर्कफोर्स में वुमेन्स कम है, क्यों है? बिकॉज एजुकेशन कम है, उनकी लिटरेसी रेट कम है, राइट? तो डायरेक्टली आपको नंबर इम्पैक्ट पता लग जाता है क्या चल रहा है। द गैप बिटवीन द स्टेट्स अगर ये देखें तो लाइक केरला और में 96% है, और वर्सेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जो स्टेट्स है उसमें 75-76% है। दे आर फार बिहाइंड, और रूरल में जाएं तो और भी कम है। तो इससे क्या होता है, इनकम डिवाइड होती है कि लाइक भाई सम स्टेट्स में हायर जॉब्स हैं, क्योंकि जो कंपनीज आती है वो उसी स्टेट्स में जाती हैं बिकॉज वहाँ पर लिटरेसी है, वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती है, इनकम ज़्यादा बढ़ती है, और कोई कोई स्टेट से वो बहुत पिछड़े पीछे रह जाते हैं, राइट? बिकॉज देर इज यू नो वर्कफोर्स ही नहीं है, राइट? तो क्या करेंगे? अभी जैसे आप यहाँ पे यूएस में देख लीजिए तो बिग मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा हब्स हैं, जॉब्स हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये सब ज़्यादा हैं, तो यू गेट ऑल ऑफ दीज यू नो वर्कफोर्स विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम कॉलेजेस। तो ये सब कौन पढ़ सकता है और कौन नहीं पढ़ सकता है उसका सवाल नहीं है। द रियल चैलेंज इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। लाइक बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनकी लर्निंग आउटकम्स वीक रहती है, मतलब उनकी क्लास लेवल की जो बेसिक लाइक रीडिंग और मैथ की स्किल्स है वो बहुत कम है, राइट? एक तो होता है ना कि आप डिग्री लेके आ जाओ, और आता क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे, वो जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ज़रूरी है। आई मीन आई कैन वाउच फॉर इट, लाइक जैसे हम इंडिया में पढ़े हैं वर्सेज यहाँ पे कॉलेज में जाएं, द एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? आई मीन मोर ऑफ द थिंग्स आर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, इट्स नॉट अबाउट वो रट्टा मार के पढ़ने हैं और वो क्वेश्चन पास करने हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल प्रैक्टिकल, राइट? थिंग्स आर डिफरेंट, द एजुकेशन सिस्टम इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, तो उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर एक ब्रेन ड्रेन पैराडॉक्स है, राइट? अगर आप देखें तो जो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है जैसे केरला या हिमाचल, वहाँ पे एजुकेटेड यूथ जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो या तो वो बाहर चले जाएंगे या हमारे जैसे यूएस में आ जाएंगे। तो लिटरेसी बड़ी है लेकिन इकोनॉमी खाली
रह जाती है उसकी वजह से, बिकॉज आपका जो टैलेंट था उस स्टेट का वो चला गया दूसरे स्टेट में बिकॉज वहाँ पे जॉब्स नहीं रह गई. तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप कहीं, आई एम जस्ट पिकिंग एनी स्टेट, आई डोंट इवन नो, लाइक आप ले लीजिए आप ओडिशा से पढ़े हैं और आप बहुत ही शार्प हैं, आपने IIT से कुछ पढ़ लिया है ये वो, अब आप चले जाएंगे बॉम्बे या ऐसे शहर में राइट जहाँ पे जॉब है, तो वहाँ का स्टेट का ब्रेन ड्रेन हो गया, वर्क फोर्स जो थी जो बेस्ट वो चली गई आपके पास क्योंकि वहाँ पे जॉब ग्रोथ नहीं है. तो ये साइकिल यू नो है जो सिर्फ स्कूल बनाने से नहीं टूटेगा राइट. लाइक आप स्कूल अभी ना मैं देख रहा था कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर 93,000 है कि 9300, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, आई हैव टू गूगल दिस, बट दिस इज रियल. गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए राइट और उसकी जगह पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल दिए क्योंकि ये बिजनेस हो चुका है, धंधा हो चुका है. और जो नॉर्मल स्कूल की फीस है, आई वॉज लाइक शॉक्ड कि अगर आप देखें, और मैं सच बता रहा हूँ कि 40,000-50,000 रुपये स्कूल की फीस है बच्चों की, लाइक छोटे बच्चों की, हम लोग की तो 100-200-300 रुपये में पढ़े हैं और वहाँ उनकी फीस देखिए कितनी ज़्यादा है. तो लाइक एक नॉर्मल फैमिली कैसे अफोर्ड करेगी. फिर जब कॉलेज जाना है राइट, आई कैन टेल यू माई ब्रदर वॉज रियली शार्प, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस स्टूडेंट था वो, ही टॉप्ड इट इन बॉम्बे, ही वॉज अराउंड लाइक 97% उसका था, फिर भी ही कुडंट गेट अ फ्री सीट एंड अवर इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट दैट वेल दैट टाइम, सो ही हैड टू ट्रैवल 2 hours टू कॉलेज आउट ऑफ बॉम्बे टू गो एंड फिनिश हिज इंजीनियरिंग डिग्री. सोचिए उस टाइम पे वो हाल था राइट, अगर आपको फ्री डिग्री लेनी है तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब फ्री सीट लेनी है आपको तो रेगुलर कॉलेज फीस दे के. दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन देन, तो आप तो सोचिए क्या हुआ होगा. तो ये दिस इज द रियल थिंग, लाइक दिस समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट के एजुकेशन चेंजेस द होल डायनामिक्स ऑफ एवरीथिंग, और अभी भी इन चीज़ों में बहुत काम करने की ज़रूरत है बिकॉज व्हेन यू गेट द शार्पेस्ट ऑफ द शार्पेस्ट दे डिप आउट ऑफ द कंट्री और दे डिप आउट ऑफ द स्टेट एंड गो समवेयर. और स्कूल्स जो हैं वो अभी भी, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था कि एक क्लास के अंदर, एक ही रूम के अंदर 6th, 5th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ना ही कोई बोर्ड है ना कुछ है. अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू पोक अराउंड बट ये चीज़ रियल है. लाइक आई मीन आज तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, वो माइक लेके वो पहुंच गए हैं वो लोग राइट एंड दे आर शोइंग द रियलिटी. और उसी जगह पे मंत्रियों के बिलबोर्ड्स लगे हैं, पॉलिटिशियंस की साइंस लगी हैं, वो नेताजी के एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ये माइंडसेट इज व्हाट इज द कैंसर व्हिच इज कॉजिंग द डैमेज एंड इसकी वजह से पीछे रह रहा है. अगर देखा जाए तो वी आर द शार्पेस्ट, वी हैव सो मच टैलेंट, बट ये एजुकेशन जो उनकी कोरेज में उनको नहीं मिल रही है, इट इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड एंड नॉट एवरी पेरेंट कैन अफोर्ड टू गिव एजुकेशन टू देयर चाइल्ड सो ईजीली. तो आई वुड पॉइंट दिस, देयर इज लाइक अ ह्यूज गैप हियर टू वर्क ऑन. तो चलिए सुनिए गाने, देन आई विल बी राइट बैक, विल कीप टॉकिंग मोर अबाउट दिस. अगली बात हम करेंगे सेहत की, हेल्थ केयर का क्या हिसाब किताब है वहाँ पर.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद पैन एंड वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू 1.5 आवर्स ऑन द शो। हम बात कर रहे हैं इंडिया 80 की। तो पहले सेगमेंट में हमने शुरू किया था ऑल द ग्रोथ गुड एस्पेक्ट्स, और अभी सेकंड सेगमेंट में हम बात करें कि अभी भी क्या चल रहा है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर बिहाइंड ऑन। सो इफ यू ट्यूनिंग इन नाउ, डोंट थिंक दैट यू नो मैं कोई निंदा चुगली कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट रियली टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस विच इंडिया इज स्टिल फेसिंग एट 80, राइट, एट द सेकंड सेगमेंट ऑफ द शो। तो इंडिया में हेल्थ का सीन की बात करते हैं, राइट, सेहत का सवाल, राइट, कि ये पैराडॉक्स क्या है। एक तरफ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स है जहाँ पे अमेरिका में यूरोप से लोग यू नो मेडिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ बहुत ही बेसिक हेल्थ चैलेंजेस है वहाँ पे। मैं कल ही वीडियो दिख रहा था एक बंदे की, जिस जो आई थिंक देर इज वन लाइक धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल बता रहे थे बॉम्बे में, लाइक इट्स लाइक अ 5-स्टार होटल, नीचे स्पा है, यू नो यू नेम इट, उस तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं, फुल डाइनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, गिफ्ट शॉप है, सब कुछ है। मगर एक जगह पे है जहाँ पे ये नंबर्स बोल रहे हैं, ये नंबर्स क्या कह रहे हैं कि अंडर 5 चाइल्ड हैज यू नो स्टंट ग्रोथ है, राइट, विच इज लाइक स्टैंड्स अराउंड लाइक 29% नेशनली, मीनिंग कि 3 out of 10 यंग चिल्ड्रन आर नॉट ग्रोइंग टू देयर फुल पोटेंशियल विद देयर हाइट एंड एज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मतलब खाने के लिए नहीं है, फुल न्यूट्रिशन नहीं है, लाइक चाइल्ड वेस्टिंग, राइट, विच इज बींग लाइक अंडर वेट, विच इज लाइक अबाउट 31%, विच इज लार्ज अबाउट द सेगमेंट जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, राइट, कि भाई बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है वहाँ पर जो न्यू जनरेशन ग्रोथ हो रही है। Around 15% of infants age 2 to 23 months receive minimal adequate diet, right? तो इसका मतलब क्या है कि राइट अगर आप देखें तो बहुत ही लोगों के अंदर अभी भी स्टंट ग्रोथ है। ये भी देख सकते हैं आपके यू नो एक मेडिकल भी एक टूरिज्म है और साथ में एक बिजनेस भी बन चुका है कि आई वॉज वॉचिंग राज शमानी और समबडीज पॉडकास्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया में 90%+ लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो सी सेक्शन डिलीवरी कराएं क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में पैसा ज़्यादा बनता है उसमें, राइट, नेचुरल बर्थ के थ्रू। सो इट इज़ ऑल्सो जस्ट बिकम लाइक यू नो एक इशू करप्शन का वहाँ पर भी बहुत बड़ा है, राइट। इंडिया हैज़ नाउ एस्टिमेटेड 101 पीपल, और ये एक हेल्थ का पैराडॉक्स अलग है, राइट, 101 मिलियन पीपल लिविंग विद डायबिटीज एंड अदर 136 मिलियन पीपल हु आर प्री डायबिटिक। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो लाइफ स्टाइल बर्डन है वो डिजीजेज का वहाँ पर शुरू हो गया है। तो एक जगह पर तो जो बच्चे हैं वो यू नो मैल न्यूट्रिशन उसमें बड़े हो रहे हैं, स्टंट ग्रोथ से चल रहे हैं, जहाँ पे दूध नकली आ रहा है, पनीर नकली आ रहा है, खाने की चीज़ें नकली बन रही हैं, जैसे आपने आप बहुत वीडियो देखे होंगे अभी डाबर की हनी नकली है, खाना नकली है। अगेन दिस इज नॉट द गवर्नमेंट इशू, बट अगेन द एनफोर्समेंट नीड्स टू हैपन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, क्योंकि इसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जरूरत है, राइट। पर दूसरी जगह पे जो ये सब जो चीज़ें हैं वो लोगों की हेल्थ ख़राब कर रही है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़, यू नो ब्लड प्रेशर, डेली कार्ब डाइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी हाई, लाइक यू नो बहुत ज़्यादा एक पेंडेमिक बन चुका है। तो ये यू नो ये दोहरा बोझ है, लाइक इट्स अ डबल बर्डन, राइट, ऑफ मैल न्यूट्रिशन, जैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि दिस इज लाइक अ डबल बर्डन, कि जो बच्चे हैं वो इससे परेशान हो रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो ये बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, सब चीज़ें बढ़ रही है, बिकॉज खाना खराब है, पानी खराब है, पानी साफ नहीं है, हवा में पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो दूसरी तरफ एडल्ट में डिजीजेस जहाँ पे बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल यू नो दोनों बदल रही हैं, राइट, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, लाइक कि भाई ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें मत खिलाओ, राइट। मैंने बहुत सारी जहाँ पे वहाँ पे देखा है कि घी तेल मक्खन तो ऐसे चल रहा है कि जैसे लाइक यू नो सबके लोहे के हार्ट है वहाँ पे, कि कुछ होने वाला ही नहीं है। सो इट डजंट वर्क, राइट। सो अच्छी बात ये है कि लाइक नाउ द गवर्नमेंट हैज पुट लाइक आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स हैं जो करोड़ों लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ रही है। इट इज़ मेकिंग थिंग्स अफोर्डेबल फॉर पीपल, बिकॉज द बिगेस्ट इशू एक पॉडकास्ट में मैं देख रहा था कि फैमिली जहाँ सफ़र करती है, जहाँ पे उस फैमिली के अंदर एक बीमारी शुरू होती है, वो फैमिली को पूरा ड्रेन कर देती है फाइनेंशियली, बिकॉज दे कुडंट मूव फॉरवर्ड। अभी कोई ऐसे अपने फैमिली मेंबर को मरते तो नहीं छोड़ सकता, सो यू गो द मिनट यू गो टू द हॉस्पिटल यू हैव टू पे द मनी अप फ्रंट देयर टू गेट द जॉब टू गेट एनी थिंग डन, और वहाँ पर वो डेथ साइकिल उस फैमिली के ऊपर शुरू हो जाता है। तो यू नो द आयुष्मान भारत जैसी कोई जो स्कीम्स हैं इट रियली हेल्प्स, राइट, लेकिन रूरल इंडिया में आज भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही नहीं है, बिकॉज दे
are either going into some bade shaharon mein ja rahe hain, ya they are dipping out of the country, right? और या तो फिर लोग दूर दूर तक ट्रैवल करके जाते हैं चेकअप करने के लिए. जब तक कि ये गैप नहीं भरता, इंश्योरेंस कार्ड होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज यू नो यू डू नॉट हैव डॉक्टर्स देयर इन द इंस्टीट्यूशंस टू लुक एट यू. और बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हैं मेडिकल के बारे में, तो यू नो ब्लड रिपोर्ट्स और ये सब चीज़ों में कितने ये सब एक तरीके का रैकेट और माफिया बन चुका है. अगेन नॉट अबाउट द कंट्री बट अबाउट द पीपल हाउ दे आर रनिंग इट, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है. सो हेल्थ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर. अगर आप स्वस्थ हैं, यू आर फिजिकली फिट एंड फाइन एंड योर ग्रोथ इज देयर, डेफिनेटली इट यू विल कॉन्ट्रीब्यूट. मगर अभी आप हेल्थ से ही सही नहीं है तो हाउ विल यू कॉन्ट्रीब्यूट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज वी हैव. तो सुनिए गाने शाने, देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन एंड वी आर ऑन द शो। वी आर ऑलमोस्ट कमिंग क्लोज। आज हम मना रहे हैं इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, द 80th ऑफ इंडिया। सो चलिए अभी लास्ट सेगमेंट पे बात करते हैं कि लाइक यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स। हमने पहले बात की सभी ग्रोथ, बढ़िया चकाचौंध चीज़ें जो हो रही है इंडिया में, इंडिया इज़ ग्रोइंग। और अब दूसरी जगह पे बात करें उसकी चैलेंजेस की, राइट? तो सबसे लास्ट जो में आती है, राइट, नौकरी, भ्रष्टाचार, सिविक सेंस, ये सब चीज़ें बहुत लोगों को परेशान करती हैं, राइट? तो सबसे बड़ी चीज है ये कि इट इज फ्रस्ट्रेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू नो द रेड टेप, द ब्यूरोक्रेसी, द जुडिशियल सिस्टम की जो वेट पीरियड है, एक प्रोसेस है, चाहे आप जितने भी अमीर हो वहाँ पे, राइट, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस रोड पे चलते हैं जहाँ पे हॉर्न्स बजते हैं और वो जो एक सिस्टम में आपको जाना पड़ता है पुलिस और ये सब चीज़ों के, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है वो, राइट? तो let's look at some numbers, right? Jobs ka, right? So youth unemployment stood roughly around 16%, unemployment around 16% in 2025, meaning like one in six young person is actively looking for work and can't find one, right? Ek banda chhe mein se hona. Aap dekhiye India ki population 116 billion hai, right? 146 crore hai. I'm not saying billion. 146 crore hai, right? So demographic divide dekhiye, jo median age under 30 is often greatest asset, right? But at World Bank is flagging that, saying it's the highest informality job market hai, जहाँ पे प्रसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। मतलब कि भाई जॉब्स के अंदर यू नो जैसे कि यहाँ पे कैसे लेबर लॉज होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, और जो भी कंपनीज आती हैं रेड टेप ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, राइट? आई मीन इवन दो कि चीज़ें चेंज हुई हैं बट फिर भी देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ यू नो दिस लाइसेंसिंग, ये सब चीज़ें, कोई चीज़ मतलब उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। एंड देन यू गो इनटू दिस होल यू नो लूप ऑफ कोर्ट केस, जहाँ पे यू नो आई वाज जस्ट रीडिंग वन ऑफ द थिंग्स के कितने ही सालों लग जाएंगे इंडिया को, 100+ ईयर्स, अगर उनको खाली बस वो जो पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करना है। तो इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे लाइक यू नो जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा है और जुडिशरी में इतना बैकलॉग है, तो कितना हार्ड हिट होता है ये सब चीज़ों को जब लोगों की लाइफ के अंदर, व्हेन इट कम्स टू व्हेन दे सफर विद इट, राइट? टू हिट द हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2047, जो 100 ईयर्स पे इंडिया रीच करेगा, इंडिया नीड्स टू सस्टेन अबाउट 7.8% एनुअल ग्रोथ फॉर दिस नेक्स्ट टू डेकेड्स। कंसिस्टेंटली 7.8 पे अगर हम ग्रो करेंगे तब जाके हम कन्वर्ट होते हैं इनटू मिलियंस ऑफ दिस जॉब्स फॉर दिस यंग यू नो जनरेशन टू कम अहेड। उतनी ग्रोथ पे चलना पड़ेगा तभी ये जो यंग डायस्पोरा आ रहा है उनके लिए जॉब्स रहेंगी, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट, राइट? डिपेंड्स अपॉन हाउ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज मूविंग, राइट? तो ये इमेज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, राइट, ये तब तक है जब तक यू नो करोड़ ऑफ लोगों को जो एक्चुअल हैं, जो उनको जॉब रहें, उनको डिग्निफाइड जॉब मिलें, वरना वो डिविडेंड डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक यंग पॉपुलेशन है आपके पास बट उनके लिए जॉब्स, बिजनेस ग्रोथ ये सब नहीं होगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि वो करेंगे क्या, दे विल डिप आउट और दिल फाइंड सम अदर ऑल्टरनेटिवस। कुछ ना कुछ तो people need to grow, right? There will be no options remaining for them. Aur abhi AI ka zamana to aur bhi khatarnak hai. I don't know how India will sustain that. Corruption, right? If you look at this is the biggest pet peeve which I have. Ke abhi bhi aap dekhte honge ke पैसे के बगैर काम नहीं होता। इफ़ यू पुट अ 500 रुपीज़ समवेयर देन द जॉब गेट्स डन, बट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है करना अभी, राइट? बिकॉज पीपल जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे, बट the issue lies on both the sides, जो दे रहा है और वो ले रहा है, दोनों जगह पे है, राइट? तो यू नो इफ यू लुक एट द नंबर्स, इंडिया रैंक्स 91st आउट ऑफ 182 इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विद द स्कोर ऑफ 39 आउट ऑफ 100। देखिए कितना पीछे है, राइट? दैट्स आई मीन इन इम्प्रूवमेंट, लाइक अगर आप देखें तो फ्रॉम 96 to 38 अ ईयर बिफोर, बट फिर भी अगर देखा जाए, और ये सब क्रेडिट है डिजिटल गवर्नेंस का, ये सब जो बंद किया है, डायरेक्ट डिपॉजिट देना, जो बेनिफिट्स देना डायरेक्टली लोगों को, UPI है, ये सब इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, राइट? कि भाई
ये मिडल मैन काटना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ों के अंदर, राइट। इंडिया स्टिल स्कोर्स यू नो बिलो द एवरेज ऑफ 43, मीनिंग द रियल मेजरेबल प्रोग्रेस अमॉन्ग द रोड साइड स्टिल रिमेन्स बहुत पीछे है अभी इस जगह पे, राइट। तो इन चीज़ों से यू नो दीज आर द थिंग्स विच इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। होपफुली यू नो थिंग्स चेंजेस और लोग अब निकल रहे हैं, दे आर जब मीडिया इज़ आउट, सोशल मीडिया इज़ आउट, ये चीज़ें लोग डर रहे हैं भाई ये चीज़ें अभी करना बंद करना पड़ेगा, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ नॉट ईजी। तो यहाँ यू नो ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जेन्युइनली बहुत चीज़ों को ठीक भी किया है, बट सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है उसको आपको यू नो ऐप्स और इन तरीके के थ्रू आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, इट हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम विद इन, राइट। सिविक सेंस ये सबसे टॉपिक जिसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया, यू नो लाइंस में ना लगना, कचरा सड़कों पे फेंकना, अपने घरों के बाहर गटर में फेंक देना कुछ भी, फायर लेंस नहीं है, लाइक यू नो ऑल दीज थिंग्स, लाइक ये सब सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ये हमारी आपकी ये सभी की प्रॉब्लम है, बिकॉज रोड बना सकती है, लाइक लॉज बना सकते हैं, पर लेकिन सिविक सेंस लोगों को खुद को अपने अंदर डालना होता है, गवर्नमेंट आपके अंदर आके नहीं डाल सकती, राइट। तो ये चीज़ें it is like a part and parcel of that, you know, that thing which is happening there. So but these are the things which India needs to work on, and again, you know, nothing wrong, every country has its challenges. We have come long ways from being into slavery and coming out, and then I wouldn't use the word slavery, but you know, किसी की गुलामी के नीचे रहना, बाद में इंडिपेंडेंस लेना, इतनी struggles, challenges. India has a beautiful, journey, but you know, there are still challenges, and these are the things which we are facing. तो गाने वाने सुनिए, we'll be right back for the closing after the break.

तो जी हाँ दोस्तों, वर कमिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू द शो फिनिशिंग. आप तो आपने देखा कि हम इस 2 घंटे में बात करते हैं कि जो एक इंडिया जो चांद पे पहुंच गया है, और एक इंडिया जहाँ पे बच्चों को दे आर स्टिल मालन्यूट्रिशियस राइट नाउ, राइट? एंड एक इंडिया जहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स है और पेमेंट सेकेंड्स में पहुंच जाती है, वहाँ पर एक करप्शन का भी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुका है. दोनों सच है, एक ही देश में हो रहा है, राइट? यहाँ हम राली में नॉर्थ कैरोलिना में बैठे हैं, अपने इंडिया को में हज़ारों माइल दूर है, राइट, इंडिया से, लेकिन हमारा कनेक्शन वहाँ से ख़त्म नहीं होता. जब भी आप अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं, या अपनी कोई सैलरी इंडिया के में भेजते हैं, अपना हिस्सा भेजते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इंडिया से पार्टनरशिप के लिए जुड़ते हैं, हम सभी इस स्टोरी का हिस्सा हैं, राइट? 80 ईयर्स एक देश के लिए बहुत लंबा सफर है, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से अभी ये शुरुआत है. दिस इज नॉट लाइक अब कुछ बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है, राइट? जो चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब, करप्शन, सिविक सेंस, ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है, राइट? हमें दिखाया है कि इंडिया, इफ दे प्रायोरिटाइज, लाइक वी कैन इवन स्पेंड समबडी टू गो ऑन अ स्पेस मिशन, डिजिटल पेमेंट्स, लाइक अगर कुछ प्रायोरिटी बनाया तो वी हैव सॉल्व इट. सो ऐसे इंडिपेंडेंस डे में ऐसे ही चलते रहें, एंड देन कीप टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस प्रायोरिटीज, वी हैव टू कीप पोकिंग अराउंड ऑन दिस डिफिशेंसीज वी हैव. तो उसकी अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स को भी सीरियसली डिस्कस कीजिए, बिकॉज अनलेस यू डोंट डू दैट, यू आर जस्ट सिंपली पुटिंग देम अंडर द रग्स. तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं. आप सभी को 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक. Hopefully you're enjoying. Jai Hind, and we will meet you next week one more time with a new topic. Chaliye, enjoy and stay safe.

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira, and we are celebrating Indian Independence Day, where we are going through some amazing dialogues which make us feel so patriotic. ये हमारा देश, ये बुद्ध, अशोक, गांधी और नेहरू का देश है. शांति का पुजारी जरूर है, लेकिन बुजदिली का कायल नहीं. It is the dialogue from the film हकीकत, and Shibani Bhatija, writer of My Name Is Khan, said, I like this dialogue from Hakikat because it associates great Indians, actual people who follow the principles, with what it is to be Indian. कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है. इट इज डायलॉग फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती, एंड आई लव दिस डायलॉग बिकॉज इट कैप्चर्स व्हाट पेट्रियोटिज्म रियली मींस टू मी. अ नेशन इट इजंट बिल्ड बाय गवर्नमेंट्स अलोन, इट इज बिल्ड बाय इट्स पीपल, एंड इन अ डेमोक्रेसी एंड इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, वी आर नॉट जस्ट सिटीजंस, इंस्टेड वी आर स्टेक होल्डर्स. एवरी जनरेशन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंडिया इट वॉन्ट टू सी, एंड रिसेंटली द वे जेन ज़ी हैज स्टेप्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ झारखंड टू जंतर मंतर, रेजिंग देयर वॉइसेस, डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी and saying that they want change and are willing to fight for it has genuinely refreshed my faith in this dialogue. India doesn't just occasionally offer us hope, it constantly challenges us to act. It reminds us again and again that change is not something we want for, we wait for. It is something we participate in. That to me, it's patriotism. Not expecting a perfect India, but having the courage to help make it better. Kalol Mukherjee, documentary filmmaker, Her Land. Stay tuned to know the next

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। दिस इज द डायलॉग फ्रॉम द फिल्म चक दे इंडिया। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा एंड ऑन द इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो वी आर गोइंग थ्रू सम डायलॉग्स विच मेक अस फील सो पेट्रियोटिक एंड यू नो इन अ वर्ल्ड वेयर डिविसिवनेस थ्राइव्स अस एंड देम इज अ नैरेटिव दैट टॉट इवन टू लिटिल चिल्ड्रन एट होम वेयर कास्ट कलर क्लास जेंडर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस आइडियोलॉजी एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अ बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड आइसोलेशन दिस वन डायलॉग एक्सट्रीमली Secondly, talks of unity. It embodies togetherness, love and pride in our people. It offers a narrative that is inclusive and that is something that we need more than ever today, said Vibha Singh, screenplay writer, The Test Case. And about this dialogue, Sudeep Nigam, writer of Avrodh, The Sage Within, said, I think this is one statement that really connected with me apart from the whole film. This dialogue talks about secularism and unity that is the need of the hour. We as a society are using our secular nature over the last few years. I think this is a good reminder of what the foundation of this country is built on. And though we are different in terms of states, religion and caste, we are all Indians and that is the unity we need. This is a line that has stayed with me. Actually, man. Stay tuned for more and I'll be back.

इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास. दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी राज ज्वेल्स बंसल ग्रुप.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

टू ऑल ऑफ यू, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। एंड आज का शो जो हमारा है ये बहुत ही खास है, एंड वीकेंड का शो हमारा है ये आज़ादी का रंग नॉर्थ कैरोलिना आरटीपी एंड रैली के संग। तो आज तारीख है 15 अगस्त 2026 और पूरा भारतवर्ष आज अपने वैभवशाली इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर छू रहा है। आज हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, भले ही हम अपने प्यारे भारत देश से हज़ारों मील दूर इस आरटीपी रैली धर्म में है, लेकिन

खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ये उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत आज हम आजाद हवा में रह रहे हैं। इस साल 2026 में भारत का ये फेस्टिवल बेहद खास है, क्योंकि देश अपनी आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पूरे भारत में इस बार की थीम विकसित भारत को लेकर रखी गई है, जिसमें टेक्निक प्रगति और हमारी जो ट्रेडिशन है उसका अद्भुत संगम देखने मिल रहा है। दिल्ली के लाल किले से लेकर देश के हर कोने में तिरंगा आन बान और शान से लहरा रहा है। अगर आप भी इस साल के इंडिपेंडेंस डे के इतिहास, इसके गहरे महत्व, प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, जहां आपको मिलने वाली है पल पल की खबर। चलिए इंडिपेंडेंस डे रेडियो नायरा के साथ सेलिब्रेट करते हैं एंड एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मतलब जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है तो याद आती है मुझे, मैं जब छोटा था एंड हम सब लोग कपड़ों पे प्रेस करते थे, उसके बाद अपनी अपनी शालाओं में जाते थे एंड यू नो ये बहुत ही एक अलग फीलिंग रहती थी। लाइक रात से ही नींद नहीं आती थी क्योंकि कल मॉर्निंग में उठना होता था। मॉर्निंग में उठने के बाद फिर कपड़ों को प्रेस करके अपने अपने शालाओं में, वर्किंग प्लेस में जाना होता था एंड उसके बाद यू नो लाइक उसके बाद परेड होती थी। देन बहुत चीज़ें होती थी, राष्ट्रगान का वो जो सिनारियो हुआ करता था वो अलग लेवल पे था। लेकिन उसके बाद जो डांस परफॉर्मेंसेस, उसके बाद मिठाइयाँ जो बटती थी एंड क्या ही माहौल रहता था। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस डे का ऐसा डे है, आज भी है, कि जिसका इंतज़ार बेसब्री से होता है। लेकिन बचपन की इंडिपेंडेंस डे की जो यादें हैं उनकी जगह कोई भी ले नहीं सकता। इंजॉय करते हैं

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स एंड आजादी का ये रंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के हर इस कोने में बिखरा हुआ है जहां कोई भी भारतीय रहता है। अमेरिका के टाइम स्क्वायर से लेकर लंदन, दुबई और हमारे अपने नॉर्थ कैरोलिना में भी भारतीय समुदाय इस दिन को बेहद धूमधाम से मना रहा है। चाहे फिर रैली भी क्यों ना हो एंड चाहे धर्म भी क्यों ना हो, लोग पारंपरिक कपड़ों में इकट्ठा हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अपनों से जुड़ने रहने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जगहों पर इतना अच्छा हमारा ये इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत आज जिस तेज़ी से आर्थिक और कूटनीतिक तरह से खड़ा रह रहा है, बनकर उभर रहा है, उसने विदेशों में रहने वाले हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। अगर आप दुनिया भर में फैले हमारे प्रवासी भारतीयों के इस फेस्टिवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कदम को पूरी ग्लोबल कवरेज देखना चाहते हैं तो रेडियो नायरा के साथ आप जुड़े रहिएगा।

0: भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। मतलब एक अपनापन भारत के लिए जो है वो हमेशा रहने वाला है। कहीं पर भी जाओ दुनिया में, लेकिन भारत का नाम जो गर्व से लेते हैं वही असली भारतीय है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। अब बात करते हैं हमारे रिसर्च ट्रायंगल पार्क यानी आपके और हमारे इलाके की कुछ बेहद ज़रूरी खबरों की। अगर आप धरम या चैथम काउंटी के निवासी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थानीय प्रशासन ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद रैली शहर से पानी के कड़े नियमों को हटा दिया है, लेकिन अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि डरम और चैथम काउंटी में सूखे के कड़े उपाय अभी भी पूरी तरह से लागू रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपने बगीचों में पानी डालने, गाड़ियां धोने या पानी का किसी भी तरह का फिजूल खर्च करने से बचना होगा। एंड ये जो सावधानी है ये हर एक नागरिक को पालन करनी ही होगी। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।
1: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, व्हाट हैपेंड।

0: कहूंगा कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?